नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी तयायो सूरा चौसिया मी तयायो सूरा तुबरी शिवा ठेया।